योषा गणेन वरदध्नि विमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषात् कलिम् विदधते कगुभश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्र शतपत्र गतालिवर्गा हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रना

बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु देविह गराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकार महिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दुभौम बुध वाक्परिकाव्य सौरिस्वर्भानुकेतु दिविषत्परिषत्प्रधाना